0: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड मेबली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
2: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
3: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com. फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया. फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
1: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड, LE4 5EA.
3: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
4: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your

0: G-Head. Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: For travel, at all protected.
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Like a radio.
1: एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है extraordinary.
2: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. The Bollywood King, Bali Brambat, with the best of Bollywood classics every weekday at 1 p.m. Leica Radio.

0: Leica Radio.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई।

0: रे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

0: खुल गई चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

0: जो मीसा जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

0: जोर करेंगे झगड़ा प्यारे सारे मारे जाएंगे
1: सारे मारे जाएंगे सारे मारे जाएंगे।
0: इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे
0: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

0: भैया हाय हाय
1: जी है
2: लाइका रेडियो
1: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: Ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: क्या आप नर्स फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है शुरुआती सैलरी है £39,500 साथ में पूरी ट्रेनिंग लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स दिलचस्पी है आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स

0: किशोर कुमार की आवाज में अपने जमाने का सुपरहिट गाना फ्रॉम द मूवी कटी पतंग, और उससे पहले लता जी और कुशीर दो की आवाज में प्रेम बंधन फिल्म का गीत आपने सुना। दो बैक टू बैक गीतों के साथ लीजिए आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। सैटरडे का दिन है आज, 18 जुलाई है आज, और मैं जानना चाहती हूँ आप सब कैसे हैं आज। लीजिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल मजे में हैं, खुश हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, और अब तो मौसम भी हम पर आजकल थोड़ा मेहरबान है तो उसका आनंद उठा रहे हैं। तो बस मौसम का मजा लेते रहिए, यहाँ से बजने वाले गीतों को सुनते रहिए, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे गीत आपके लिए लेकर आई हूँ जो जरूर आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएंगे। यस, 1 तक आपके साथ रहूंगी, और देखिए आप में से कुछ साथी आज मुझे याद दिला रहे हैं। यस, मैं जानती हूँ, जरूर उस बारे में बात करूंगी। भाई जीवन बहुत छोटा है और हर इंसान जो दुनिया में आया है उसे जाना ही है। यहाँ परमानेंट बसेरा लेकर कोई भी नहीं आया है। बड़े बड़े सुपरस्टार भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और आज ऐसे ही एक सुपरस्टार के बारे में आप सब मुझे याद दिला रहे हैं। ज़रूर उनका नाम लूंगी, उनके बारे में बात करूंगी। इनफैक्ट आज की यादें में मैं उन्हें ही याद करूंगी, लेकिन उससे पहले एक अच्छी सी बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि खास मौके के लिए कपड़े और जूते रखना बंद कीजिए। जब भी मन करे उन्हें पहन लीजिए, क्योंकि आज के जीवन में जीवित रहना ही किसी खास मौके से कम नहीं है। इस बात को सोचिए, तब तक मैं आपको ये बता दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 128.9 भारतीय रुपए, और हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू रहेंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: जी हाँ, तो हम जानते हैं कि फाइनल मैच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में होने वाला है, लेकिन आज भी एक मैच है 3rd पोजीशन के लिए, और ये मैच है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि बिल्कुल मत भूलिए अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ, और ये आपको मिलेगा जब आप कहेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Leica Radio.
4: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 899. Karela aur Long Dudi 299 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN.
5: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
6: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
7: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
6: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत घुराया ते योगराज सिंह।
8: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
9: Create terror.
6: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
7: एक सिंह दा पुत्ता दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार लई लड़ूंगा भी।
10: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel.
2: your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybourne Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
12: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
13: You're both on the same road. Same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
14: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
15: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
16: Okay, help's on its way.
17: Grab my hand!
18: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
19: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
1: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सुखविंदर सिंह की आवाज में रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, 1947 अर्थ की फिल्म से लिया था ये गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और आपको बता दें कि आज ये अनोखी आवाज के मालिक यानी कि बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभाशाली, दिग्गज प्लेबैक सिंगर हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अपनी बर्थडे मना रहे हैं। 18 जुलाई 1971 में बॉर्न सुखविंदर सिंह आज 55 इयर्स के हो गए हैं और इनके जो फैंस हैं वो दुनिया जहान में फैले हुए हैं। देश विदेश में लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत गाए हैं। इनका गाना छैया छैया चल छैया छैया आपको पता होगा कितना बड़ा हिट गीत रहा था। और इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे गाने गाए हैं। 2000 के बाद के फिल्मों के ढेर सारे गाने हैं जो इनकी आवाज़ में सुपर डुपर हिट हैं, लेकिन आज भी ये गाना बड़ा ही प्यारा है और इसमें मेरा नाम है इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता है। आज ये गीत आपको सुनवाया और आज इनकी बर्थडे है तो चलिए इनको कह देते हैप्पी वाली बर्थडे।
3: ये है Like a Radio.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और ऋतु शर्मा आपके साथ है अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक, और हमारे बहुत सारे साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: चलिए, तो आपके मैसेजेस पढ़कर मुझे अच्छा लग रहा है, और ये जानकर कि आपको गीत पसंद आ रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। सो थैंक यू सो सो मच, ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। थैंक यू दिव्या जी, हैरो में आप हमारे साथ हैं। गिरीश जी भारत में हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं शनिवार का तो दिल से इंतजार रहता है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। लीजिए, सैटरडे आ गया है, शो की शुरुआत हो गई और आप मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भारत में बारिश आजकल बंद है, उमस है, गर्मी है। आई नो, मेरी भी कल अपनी फ्रेंड से बात हुई थी, वो कह रही थी बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ लंदन में कुछ राहत है, यूके में कुछ राहत है, टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया है, तो हम आजकल थोड़ा चैन से सो पा रहे हैं। और मैं यही चाहूंगी कि भारत में भी ऐसा मौसम हो जाए, ताकि वहां के लोगों को भी चैन मिले, हमारे लोगों को चैन मिले, शांति मिले। तो साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद ललित पटेल जी, थैंक यू। किशोर जा का ये गीत आपको अच्छा लगा, संतोष जी हैरो से थैंक यू, मानसी जी, संध्या भाव सर थैंक यू, गीता हर्षद जोशी जी, रोशनी, नरेंद्र भाग्या जी, मृदु जी, महेंद्र पटेल, प्रकाश सुथा जी नॉर्थ हॉल से, प्रीति बेल्जियम से, प्रज्ञा जी, दिनेश पोपट, मोहम्मद अयुब चौहान, थैंक यू सो मच कहते हैं। पहले आते साथ ही खूबसूरत गाना आपने प्ले किया, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। आपने गीत को पसंद किया, उसके लिए शुक्रिया। अर्जुन जी थैंक यू, भरत गंगाराम जी, हंसा जी, सत्यनारायण सैनी जी भारत में, राजीव पटेल जी, हरीश खत्री, हमारे राजेश जी हमारे साथ हैं, कहते हैं वीकेंड तापमान थोड़ा बेहतर होगा और मौसम में कोशिश रहेगी कि ऐसे ही गीत सुनवाऊं जो शायद आपने बहुत दिन से ना सुने हो। इसके अलावा रानी स्लाव से मिसेस शेख और हमारे राजकुमार जी, आपको भी सुबह सुबह की राम राम। चलिए अगला गीत आप सभी को डेडिकेट करते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो, Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: बिल्कुल ऋतु शर्मा अगला गीत आपको सुनाने वाली है, लेकिन उससे पहले ये जरूर बताएगी कि अगर दुबई घूमने जाना चाहते हैं तो साउथॉल ट्रैवल की बहुत ही बढ़िया डील्स चल रही हैं। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. The Ritu Sharma Show on Leica Radio.
2: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
1: Radio partner, Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
6: Beta, you're not alone. For five generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
5: So where do we find something like that now?
6: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic. Premium and made it the way our eldest used it.
7: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy, Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
8: Lester Miller is back.
9: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
8: Shin DCS. expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
10: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
8: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
10: Arts Council England.
11: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: You know how fans shout at football matches?
14: Oh, wake up!
13: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
8: Leicester Miller is back.
9: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
8: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
10: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
8: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
10: Arts Council England.
15: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
16: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
3: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert. Pooja Sweets and Savories.
10: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
3: Pooja Sweets and Savories.
17: अपने बिजनेस को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए कॉल करें. Like our radio sales on 011-6-471-0697 या ईमेल करें sales@lycamedia.co.uk.
5: Hello, wake up with me, Kajal, on the breakfast show where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Lyca Gold and Lyca Radio Midlands.
18: Divana.
19: Ek divana shahar mein.
18: Ek divana nahi, ek divani bhi.

0: ब्यूटीफुल गाना भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजों में जयदेव के म्यूजिक पर घरौंदा फिल्म से हमने आपको सुनवाया, जिसमें अमोल पालेकर थे, साथ में थी जरीना बहा। और इस गाने को सुनवाने की एक खास वजह है, वो ये है कि इस गाने के जो गाने वाले हैं भूपिंदर सिंह जी, सैडली आज ही के दिन 18 जुलाई को 2022 में 82 की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन उनके कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने हैं जिन्हें हम अक्सर ही आपको सुनवाते हैं और आप उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जन्म तो इनका फरवरी में हुआ था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी फरवरी में आती है, और ये अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे। और इनके फादर जो थे वो भी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे और म्यूजिक सिखाने में बड़े सख्त भी थे, और इसीलिए शुरुआती दौर में भूपिंदर सिंह को संगीत से डर लगता था। लेकिन बाद में उन्होंने संगीत में महारत हासिल की, और जानते हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो पर एज ए परफॉर्मर और गिटार वादक के रूप में की थी, यानी कि ये वहाँ पर गिटार बजाया करते थे। और मदन मोहन इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए, उन्होंने इन्हें सबसे पहले गाने का मौका दिया। सोचिए, मदन मोहन अगर मौका नहीं देते तो हमें इतनी खूबसूरत आवाज कैसे सुनने मिलती। हकीकत इनकी पहली फिल्म थी जिसमें इन्हें एक गीत गाने का मौका मिला था, और इन्होंने कई बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ अपनी आवाज मिलाई है। लेकिन इनका पहला हिट गाना था मेरा आपका सबका फेवरेट, दिल ढूंढता है फिर सत के वही रात दिन। अगर समय हुआ तो जरूर बजाऊंगी। और ये इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था ये गाना, इसके बाद इन्हें बहुत अच्छी पहचान मिली और बहुत खूबसूरत गाने गाए। आज ये गीत सुनवाया है, समय आया समय हुआ तो जरूर एक आध गीत इनकी आवाज में आपको और सुनवाऊंगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज आपको बता दें कि 1 pound के बदले में 130 rupees आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस, 373 पाकिस्तानी रुपीस और 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: The gold rate is 96.07 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: LEICA Radio.
1: Refreshing Asian hits across the LEICA Radio network.
0: जी हाँ, बिल्कुल। आज 18th जुलाई है, सैटरडे का दिन है। ऋतु शर्मा आपके साथ है, और आपको बताती चलूं कि आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़कर गए थे 18th जुलाई 2012 में। तो आज की यादें में राजेश खन्ना को ही याद करेंगे, उनके कुछ गाने और उनके बारे में कुछ बातें आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ याद दिला दें कि आज भूपिंदर सिंह की भी पुण्यतिथि है, आज वो छोड़कर गए थे। आज सुखविंदर सिंह अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और इसके अलावा आज हमारी बॉलीवुड की देसी गर्ल समझ गए ना, हाँ, प्रियंका चोपड़ा, आज उनकी बर्थडे है। उसके अलावा भूमि पेडनेकर की आज बर्थडे है। आज बहुत सारे साथियों का जन्म भी हुआ था, और अगर आज आपकी भी बर्थडे है तो भाई हमारी ओर से जन्मदिन की बधाइयां लीजिए। और चलिए अगला गीत आप ही को डेडिकेट करते हैं।
1: LEICA Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, Dumontford Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare dumontfordhall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-0280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट रागासन.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.

0: राजेश खन्ना पर पिक्चराइज दो बैक टू बैक गाने आपने सुने, क्योंकि आज हम राजेश खन्ना को ही याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और आप सबके फेवरेट एक्टर हैं राजेश खन्ना, जिन्हें भारत का फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। 1960 से लेकर 1970 के दशक में उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी दीवानगी इस कदर थी कि ना तो उनसे पहले और ना ही उनके बाद वैसी दीवानगी किसी और अभिनेता के लिए देखी गई। लोग प्यार से उन्हें काका कहा करते थे, और आपने उनके बारे में सुना होगा कि राजेश खन्ना ने जो कुर्ता, जिसे गुरु कुर्ता कहते हैं, छोटा कुर्ता, और जो सफारी सूट पहना, वो उस दौर का सबसे बड़ा फैशन बन गया। उनकी साइड पार्टिंग वाला हेयर स्टाइल, उनकी आंखें झपकाने की अदा और गर्दन टेढ़ी करके बात करने की अदा पर पूरा देश फिदा था। उनके बारे में कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना किसी स्टूडियो या लोकेशन पर शूटिंग करने जाते थे, तो वहां मौजूद उनकी सफेद कार को फैंस, खास तौर पर लड़कियां, चूम चूम कर लिपस्टिक के दाग से गुलाबी कर दिया करती थी, और उनकी कार जाने के बाद फैंस उस रास्ते की धूल को अपनी मांग में सिंदूर की तरह भरती थी। क्या ये सब बातें सच है? यकीन नहीं होता, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इस कदर थी राजेश खन्ना की दीवानगी। और आज उन्हीं राजेश खन्ना के बारे में कुछ बातें, उनसे जुड़े हुए किस्से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की यादें में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दे कि 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 128.9 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica
3: Radio. Leica
2: Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: तो आज इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में थर्ड प्लेस के लिए मैच होने वाला है, और इस मैच को आप जरूर देखेंगे, हम सब चेयर अप करेंगे इंग्लैंड के लिए। लेकिन बता दें कि आप बिल्कुल मत भूलिए अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.

0: राजेश खन्ना की कम बैक फिल्म थी और ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हुई थी और इस फिल्म ने ये प्रूव कर दिया था कि सुपरस्टार हमेशा ही सुपरस्टार होता है। और आज राजेश खन्ना के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं आज की यादें में।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: राजेश खन्ना की फिल्में हमारे लिसनर्स जो हैं, जो उनके फैंस हैं, उन्होंने कईयों बार देखी होंगी। लेकिन देखिए, जीवन में एक चीज होती है कर्मा, और ये कर्मा कैसे वापस आता है, मतलब मैं फिल्म की बात कर रही हूँ। कभी कभी जो किरदार हम फिल्मों में जीते हैं वो जीवन में अक्सर ही वैसा ही होता है, और राजेश खन्ना के साथ भी वैसा ही हुआ। उन्होंने, याद होगा आपको, एक किरदार निभाया था फिल्म आनंद में, एक ऐसे मरीज का रोल उन्होंने निभाया था जिसका नाम था आनंद सहगल, जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। लेकिन अपनी जिंदगी का हर पल उसने हंसते मुस्कुराते और दूसरों में खुशियां बांटते हुए जिया था। और हमने देखा है कि फिल्म के आखिरी सीन में राजेश खन्ना यानी कि आनंद दम तोड़ चुका होता है, और उसके दोस्त बाबू मोशाय जो अमिताभ बच्चन बने थे, उनकी बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोता है और पागलों की तरह चिल्लाता है, आनंद तुम बोलते क्यों नहीं, बोलो आनंद बोलो। और तभी अचानक कमरे में टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है और उसमें राजेश खन्ना की पहले से रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंजती है, और वो डायलॉग आप सबको याद होगा कि बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जह बना उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों से बंधी है। और ये सीन देखकर सिनेमा घर में बैठा हर इंसान उस समय जरूर रो पड़ा होगा, और आज भी ये सीन हमारी आंखों में आंसू ले आता है। लेकिन देखिए, समय चक्र कैसा होता है कि 2012 में जब राजेश खन्ना बेहद बीमार थे और मुंबई के अपने बंगले में आशीर्वाद में अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहे थे, जो कैंसर उन्होंने फिल्म आनंद के पर्दे पर जिया था, लगभग वैसा ही दर्द वो असल जीवन में भी झेल रहे थे। और जब राजेश खन्ना को लगा कि अब उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया है, तो उन्होंने, जानते हैं, बिल्कुल ही आनंद की तरह एक अजीब और बेहद इमोशनल इच्छा जताई। उन्होंने अपने दामाद अक्षय कुमार और अपने परिवार के सामने एक वॉइस रिकॉर्डर मंगाया, और काका ने अपनी बेहद कमजोर और कांपती हुई आवाज में अपने फैंस, अपने दोस्तों और पूरी दुनिया के लिए एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया। और जानते हैं उन्होंने इस संदेश में क्या कहा था? लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि जब वो इस दुनिया से चले जाए तब इस संदेश को सुनवाया जाए। उन्होंने जो आखिरी समय में टेप रिकॉर्ड किया था, उसमें उन्होंने अपने फैंस के नाम पर एक संदेश दिया था कि मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं, मैं हमेशा आपकी यादों में, गानों में और फिल्मों में जीवित रहूंगा। अलविदा। और जब लोगों ने उनकी डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी आवाज में ये आखिरी संदेश सुना, तो हर किसी को आनंद का वो क्लाइमेक्स सीन याद आ गया। जिस तरह से फिल्म में मौत के बाद आनंद की आवाज गूंजी थी, उसी तरह 41 सालों के बाद असल जिंदगी में भी काका अपनी मौत के बाद अपने चाहने वालों से बात कर रहे थे। और कहते हैं कि बॉलीवुड के इतिहास का ये सबसे भावुक करने वाला इत्तफाक माना जाता है, जिसने पहले सुपरस्टार की विदाई को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
0: उनके फिल्म का अगला गीत सुनवाने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क जो जगन्नाथ जी की एनुअल रथ यात्रा है उसमें साथ दे रहे हैं। ये कल यानी कि 19 जुलाई को होगी, शुरू होगी SKSST कैंटन हैरो टेम्पल से और खत्म होगी श्री स्वामी नारायण टेम्पल स्टैनमोर में। वहां पर आप जा सकते हैं, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने का भी आपको मौका मिलेगा और ये जाएगा हैरो और ब्रांड की स्ट्रीट से होता हुआ। लाइव अपडेट्स के लिए वहां पर रवि शर्मा सरिता सबरवाल होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए SKSST.org पर।
1: This is Ritu Sharma.
3: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो भाई लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आ गया है, नया एपिसोड आ गया है जिसका टाइटल है लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर, और इसे आप सुन सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजन और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, वहां जाकर आप इसे सुन सकते हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: Laika Radio.
4: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family. Radio partner Laika Radio.
5: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
6: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
7: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Saregamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
8: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
1: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
13: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle, and controversies.
14: It is. You have to be really dedicated to be able to
15: become a
14: radio presenter. So you're giving sacrifices around you as well.
15: True.
14: Whether it's at home or whether it's family.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: रफी साहब की आवाज में राजेश खन्ना पर पिक्चराइज द ट्रेन फिल्म का ये गाना आपने सुना। और आज हम यादें में राजेश खन्ना को ही याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 69 की एज में इस दुनिया को छोड़कर गए थे। और आपको बता दें कि जब 2012 में राजेश खन्ना का निधन हुआ तो उस जमाने के जाने माने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखी थी क्योंकि अमिताभ बच्चन के करियर को संवारने में राजेश खन्ना का भी बहुत हाथ था। जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ आनंद फिल्म की थी तभी उन्हें समझ में आ गया था कि इस लड़के में दम है, ये आगे जाकर कुछ अच्छा ही करेगा। और जब नमक हराम फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बार फिर से राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को साथ साथ लिया तब राजेश खन्ना को समझ में आ गया कि पर्दे पर अमिताभ बच्चन की जो दमदार एक्टिंग है उसे लोग जरूर पसंद करेंगे। और उन्हें लगा कि अब शायद दोनों के कंपैरिजन में मैं कुछ धीमा पड़ जाऊं। वो इस बात को समझ रहे थे लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन को हमेशा सपोर्ट किया और इसीलिए उनकी मौत पर अमिताभ बच्चन बेहद दुखी थे। और उन्होंने उन्हें याद करते हुए लिखा कि जब वो आनंद के सेट पर पहली बार राजेश खन्ना से मिले तो वो काका को एक टक देखते रह गए थे। उनका कहना था कि मैंने उनके जैसा स्टारडम कभी किसी का नहीं देखा। जब वो चलते थे तो लगता था कि वक्त ठहर गया है। उनके जाने से भारतीय सिनेमा का एक पूरा युग समाप्त हो गया है और वो मेरे लिए हमेशा पहले सुपरस्टार रहेंगे। हालांकि जो हीरोज होते हैं उनमें कंपटीशन भी होता है लेकिन अमिताभ बच्चन के दिल में राजेश खन्ना के लिए बेहद सम्मान था।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 130 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is £96.07 per gram.
1: Ram Jewellers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. This is Leica Radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollout Cell, Leicester, LE54UN.
4: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
5: Leicester Miller is back.
6: And the stage is about to explode. Confirmed artist
5: H. Dami. Bringing the hits, the energy and those proper live stage vibes.
6: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
5: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
6: Arts Council England.
3: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danu. Prime location,
3: high appreciation
7: in Dubai.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
9: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड
5: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
4: None Eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious. Street food ka asli maza lo quality street food Leicester par. Try kijiye crispy pani puri, spicy vada pav aur delicious pav bhaji. Sab kuch fresh aur tasty. Light khana hai to hamare cheesy sandwiches aur kid friendly treats try kijiye. To milte hain 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. Call on 0116-332-5100 aur menu online bhi check kar sakte hain. Quality street food Luton and Wembley mein to hai, lekin ab asli Indian flavors Leicester mein.
10: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
1: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK. The Ritu Sharma Show. Featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.
11: सुनो
12: कहो
11: कहा
12: सुना

0: राजेश खन्ना और मुमताज ने साथ में अनेकों फिल्मों में काम किया है और इसलिए आज इन दोनों की जोड़ी का कोई गाना ऋतु ना सुनवाए ऐसा कैसे हो सकता है। ये थी फिल्म आपकी कसम जिसमें राहुल देव बर्मन का म्यूजिक था और अगला गीत भी इसी जोड़ी पर पिक्चराइज है। और आज हमने राजेश खन्ना को याद किया है और आपको बता दें कि जब मुमताज शादी रचाकर चली जाने वाली थी तो राजेश खन्ना मुमताज से नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि अभी समय नहीं है शादी रचाने का, अभी हमारी जोड़ी हिट है, लोगों को हमारा काम पसंद है, हमारी फिल्में हिट हो रही हैं, शादी के लिए जिंदगी पड़ी है, शादी बाद में कर लेना। लेकिन मुमताज ने राजेश खन्ना की बात नहीं मानी, वो किसी को दिल दे चुकी थी और वो अपना घर बसाना चाहती थी और जानते हैं इस बात से राजेश खन्ना बहुत नाराज भी हो गए थे। एनीवेज उस समय जो हुआ होगा वो हुआ होगा, लेकिन फिलहाल इस सुपरहिट जोड़ी का एक और गाना सुनवाती हूँ आज की यादें का। शायद ये आखिरी गाना होगा, शायद क्या 100% ये आखिरी गाना होगा और इस गाने के बाद हम आपसे मिलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। और हमारे राजेश जी ने भी याद दिलाया है कि आपको पता होगा कि आनंद फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने कोई फीस नहीं ली थी। नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपने ये हमारे साथ शेयर की है तो सच ही होगी। एनीवेज कुछ बातें आज इमोशनल बातें मैंने राजेश खन्ना के बारे में आपके साथ शेयर की। वैसे तो आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि सुपरस्टार्स के बारे में लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहते हैं, लेकिन चलिए सुनवाती हूँ अगला गाना आपकी ही एक और फेवरेट फिल्म से।
1: Back to back hits across the Leica Radio Network.

0: कितने भी तू कर ले सितम, ये प्यार ना होगा कम। सनम तेरी कसम, क्या गाना है। सनम तेरी कसम फिल्म से था ये गाना, म्यूजिक बाय आरजी बर्मन। और उससे पहले आपने किशोर शर्मा और महेश शर्मा यानी कि शर्मा जोड़ी के म्यूजिक पर सनम बेवफा फिल्म का गीत सुना। और लीजिए इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल शुरू हो गया है। ये है ऋतु शर्मा शो ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क। और मैं ऋतु शर्मा आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और आपके ढेरों मैसेजेस पहुंचे हैं और आपने बहुत सारे गाने सजेस्ट भी किए हैं बजाने के लिए, लेकिन राजेश खन्ना के गाने इतने सारे हैं कि मैं आने वाले शोज में आपको सुनवाती रहूंगी। आज तो पूरे शो में आ ही नहीं सकते थे, लेकिन थैंक यू आज की यादों को पसंद करने के लिए और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई उसे सुनने के लिए। सो बस आगे बढ़ जाते हैं और इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी सुनवाती हूँ और आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत भी मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं और वो ये है कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स है दिवाली स्टोरी के। ये एक म्यूजिकल शो है जो रॉयल एल्बर्ट हॉल में जब हुआ था तो सोल्ड आउट हो गया था और इसीलिए अब ओवो अरीना वैमली में फिर से होने जा रहा है संडे 27 सितंबर को, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जा पाए थे। तो ओवो अरीना, याद रखिए, ओवो अरीना वैमली में 27 सितंबर को फिर से होने जा रहा है। और ये एक स्टूडेंट प्री शो है, टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एट द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। आपको फिर से बता दें, स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 4:45 PM एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। और इसको क्रिएट किया है, इसे बनाया है सनातन इवेंट्स फाउंडर के नितिन पालन MBE ने। और इसमें जो कोरियोग्राफी हुई है वो बॉलीवुड डांस स्कूल टीम ने की है। इस इंग्लिश भाषा के प्रोडक्शन में रामायण को 4 अध्यायों में 7 विशेष गानों के साउंडट्रैक और एक पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की टीम ने जीवंत किया है। तो ये एक मजेदार शो है, आप जरूर देखने जाइए। टिकट्स अवेलेबल है www.diwalistory.com पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
0: जी हाँ, ये है हमारा WhatsApp नंबर जहाँ पर आपको अपना मैसेज भेजना है और वो तब जब आप अपना हमारा गीत पहचान ले, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाले थ्री वर्ड्स। तो तैयार हैं? चलिए, क्योंकि इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं और उन तीन वर्ड्स को मैं बॉलीवुड के किसी एक गाने से लेती हूँ और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है तराना, दूसरा वर्ड है निगाहें और तीसरा वर्ड है जमाना। जरा लिख लीजिए, फिर आप पूछते हैं मुझसे कि तीन वर्ड्स कौन से थे और कई बार मैं जवाब भी नहीं दे पाती। तो पहला वर्ड है तराना, दूसरा वर्ड है निगाहें, हाँ लिख लिया निगाहें, और तीसरा वर्ड है जमाना। ये तीन वर्ड हैं और आपको है गाना पहचानकर मुझको बताना। रफी साहब की आवाज है, 1973 में आई थी FM और गणेश का म्यूजिक है। लीजिए, मैंने आपके लिए कितना आसान कर दिया गणेश का म्यूजिक है, रफी साहब की आवाज है, 1973 की फिल्म है। एंड आई रिपीट वंस अगेन, तराना, निगाहें, जमाना, बहुत सुंदर गाना है, लेकिन कौन सा है आपको बताना है। बताइए जरा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज भिजवा कर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 के बदले में आपको मिल सकते हैं 129.9 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE54UN.
4: The Janan and J-Dot Summer Sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot Summer Sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
8: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
9: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
10: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.
11: LemFi means quicker and safe way to send money.
10: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
11: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LAIKA.
10: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
12: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
13: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
14: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station?
15: playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जी हाँ, ये थी महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम वक्त और इसका म्यूजिक दिया था डायरेक्टर पंडित रविशंकर शर्मा ने, और वो ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और आगे बढ़ने से पहले, अपना ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं विजय गुनोवा जी, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो विजय जी, हम सभी की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां, और आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक के दोनों गाने आप ही को डेडिकेट करते हैं। इसके अलावा जयश्री जी, आप जब हम बीकानेर वाला गए थे, आप मिलने आई थी, बहुत अच्छा लगा, इतनी दूर क्रॉयडन से आप हमें मिलने आई थी, थैंक यू सो मच उसके लिए। वटफर्ड से हमें सुरेश पटेल जी मिलने आए थे, और इसके अलावा लियाकत अली वहां पर थे, और भी बहुत सारे लिसनर्स थे जिनके नाम मुझे याद नहीं है। सो थैंक यू, ये आपका प्यार ही है कि आप अपना समय निकालकर मुझसे मिलने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और हमेशा ही होती है जब भी उन लिसनर्स से मिलने का मौका मिलता है जो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भिजवाते हैं, और जब वो सामने आते हैं और बताते हैं कि मैं ये हूं, तो लगता है वाओ, अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा क्या कह रही थी, देखो बातों में मैं भूल गई। चलिए आगे बढ़ने से पहले, आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें, और ये इन्फॉर्मेशन है उन सब के लिए जो कि पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। आपने बच्चों को अपने बच्चे के जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए ये सुनिश्चित करें कि उनके सभी बचपन के टीके यानी कि वैक्सीनेशन समय पर लग चुके हों। टीके जो होते हैं वैक्सीनेशन, आपके बच्चे को खसरा, काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे समुदाय में आसानी से फैल सकती है। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीके हर साल 5,000 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं, और ये जानकर आपको भरोसा होगा कि NHS द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर के लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से लगाए जा चुके हैं। समय पर टीके लगवाना सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो आप अब भी अपने GP से संपर्क करके वो छूटा हुआ टीकाकरण पूरा करवा सकते हैं। क्या आपके बच्चे के सभी टीके समय पर लग चुके हैं? आप अपने बच्चे की रेड बुक पर देखें या फिर अपने GP प्रैक्टिस से बात करें। अधिक जानकारी के लिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर जाइए।
1: Like a radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो चलिए आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला शुरू हो गया है रफी जी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये पहला गाना।

0: यस मोहम्मद रफी और लता जी के बाजू में था ये गाना, और इस गाने को सुनकर प्रीति क्या बात है, आपने नाग की फोटो मुझे भेज दी है, क्यों डरा रहे हो मुझे, इसको देखकर बहुत डर लगता है, हे भगवान आपने क्या कर दिया। लेकिन ये धुन बहुत ही खूबसूरत थी जिसे आप सभी ने पसंद किया है। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का पहला गाना, और आपके ढेरों मैसेजेस मुझे लगातार मिलते जा रहे हैं। गिरीश जी कहते हैं कि मधुबाला में माधुरी जी की झलक दिखती थी, या ये कहूं कि माधुरी दीक्षित में मधुबाला की झलक दिखती है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं और आपने बिल्कुल सही कहा है। और चलिए अब सुनवाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना, लेकिन साथ ही साथ आपके आंसर्स भी मुझे मिलते जा रहे हैं, और किन्होंने सही सही जवाब दिए हैं मैं बताऊंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica
3: Radio. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: से लता जी और गीता दत्त की आवाजें, फिल्म यहूदी, और ये है हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। नरेन पटेल जी कहते हैं मेरा फेवरेट गाना है, बिल्कुल हमने आपको डेडिकेट किया। एंड राजेंद्र सिंह कालरा जी, आपने भी सही बताया है, फागुन में आशा जी की आवाज थी, क्योंकि लता जी ने तो ओपी नैयर के साथ कभी गाया ही नहीं, यहाँ पर लता मंगेशकर लिखा है। एनीवेज वी हैव टू करेक्ट इट, बट आगे बढ़ जाते हैं। और आज के थ्री वर्ड्स गेम का जवाब किस किस ने दिया है सही बताने का समय आ गया है, तो ध्यान से सुनिए। उल्लास टोरंटो से, योर आंसर इज करेक्ट। हाजरा जी, प्रीति बेल्जियम से, रोशनी जी, भरत गंगाराम जी, स्वाति बेस वॉटर से, नीलेश तन्ना जी, दिव्या जी हैरू से, विनोद जी, चंदू शाह, गिरीश जी इंडिया से, नरेन पटेल, हितार्थ एंड सार्थक, दिनेश पोपट जी, निर्मल एंड किरीट जी, निवेदिनी पटेल, अयूब चौहान, उषा खोड़ा, अर्जुन जी, शीतल, तोची, कुकी, रमा व्यास, जैनुद्दीन, रानी सोहानी, आप सभी ने गाने को सही सही पहचान लिया है। और अब सही सही पहचान लिया है तो मैं कौन होती हूँ जो इस गाने को ना बजाऊं? चलिए सुनवाती हूँ आपको आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, अब से बस थोड़ी सी देर में।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दे कि घूमने जाना चाहते हैं तो दुबई चले जाइए, साउथॉल ट्रेवल के पास बड़ी अच्छी डील्स हैं, उन्हें फोन कीजिए 0208574810 पर, और ये सब कुछ है टोल प्रोटेक्टेड भी है।

0: ब्यूटीफुल गाना, ब्यूटीफुल म्यूजिक। गणेश ने इसका म्यूजिक तैयार किया था रफी साहब की आवाज, और ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे ज्यादातर साथियों ने सही पहचाना था। यस, संध्या भावसर, आपने भी बिल्कुल सही पहचान लिया था। कितना रोती हो और कितनी जोर से रोती हो। जैनुद्दीन कहते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है मेरे नाम कीजिए, लीजिए मैंने ये गाना आपके नाम किया और बस अब तो जाने की बेला आ गई है। गिरीश जी कहते हैं पता ही नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए। तो मैं भी कहूंगी मेरा भी यही हाल है, मुझे लग रहा है अरे जाने का समय हो गया इतनी जल्दी। एनीवेज, जाने का समय हो गया है तो जाना ही पड़ेगा। जाते जाते एक गाना और सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: ये है
3: Like Our Radio.
1: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज ये 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
3: Laika Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download Lemfi now. T's and C's apply.
3: Laika Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Laika Radio.
0: The gold rate is 96.07 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: Laika Radio.
0: तो लीजिए, समय हो गया है.
1: Laika Radio.
4: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Laika Gold and Laika Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
0: समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार अनुराग होंगे Laika Gold पर, रूबीन फजीला होंगी Laika Radio Manchester पर, और आज हमारी नई प्रेजेंटर आपका साथ देंगी, जिनका नाम है आनंदी, Laika Radio पर और Laika Radio Midlands पर। तो मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी, अपना ख्याल रखिए, और इस शो को आप लिसन बैक पर दोबारा भी सुन सकते हैं। कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
1: दिस इज Laika Radio।
5: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट, फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio. Start

0: Mabster no Pani Puri and a Pani Puri no Pani.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
3: Notice the way fans shout at football matches.
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
4: दोनों डील करा सील
1: टाइट टाइट वेरी टाइट

0: गुड आफ्टरनून। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों ही गीत बड़े जबरदस्त थे और दोनों ही गीतों में एक आवाज शामिल रही और वो आवाज थी सुखविंदर सिंह जी की। सुखविंदर सिंह जी एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। एंड पहला गीत हमने सुना बीवी नंबर वन से और दूसरा गीत फिल्म अस्तित्व से था। और बता दूं कि इस फिल्म अस्तित्व का संगीत भी किसका था? सुखविंदर सिंह जी का। बहुत प्यारी फिल्म थी जिसमें तब्बू ने काम किया था एंड तब्बू के साथ थे सचिन खंडेडकर और उनके साथ मोहनीश बहल ने भी काम किया था और महेश मांजरेकर ने इस फिल्म को बनाया था। एंड पहला गीत बीवी नंबर वन, करिश्मा कपूर थी इस फिल्म में, सुष्मिता सेन थी, सलमान खान थे और उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। राइट भी, अगर आज आप भी सुखविंदर सिंह के साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी सारी टीम की तरफ से। और उम्मीद करती हूँ जो भी कान इस वक्त इस तरफ है यानी कि लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का स्वागत, उन सब का खैर मकदम करती हूँ। जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाती ये सरिता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपके कानों में रस खोले, बस सरिता यही चाहती है। राइट, अब सुखविंदर सिंह जी को जरा बर्थडे की विशेष दे दें। हमारी ये मनोकामना है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि उनका जीवन सुरमय रहे इसी तरह से और हमेशा वो गाते रहें, गुनगुनाते रहें, हम सबका मन बहलाते रहें। सुखविंदर सिंह जी एक प्लेबैक सिंगर हैं, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। 18 जुलाई 1971 को अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। एंड सुखविंदर सिंह ना सिर्फ एक इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, उन्होंने बहुत सी प्राइवेट गीत भी गाए हैं, गज़लें भी गाई हैं। और उनका प्राइवेट एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, छूले आ मुझे छूले। समहाउ अगर मुझे मिला तो मैं ये गाना आज के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगी, पर अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है अपने कंप्यूटर जी पर। तो इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, लिरिसिस्ट हैं एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। अपनी पावरफुल और एनर्जेटिक आवाज़ के लिए ये जाने जाते हैं और इनकी आवाज़ में कोई भी गीत जब मैं प्ले करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ सुखविंदर जी की बुलंद आवाज़ में आप ये गाना सुन रहे थे। उन्होंने हिंदी के अलावा और भी कई दूसरी भाषाओं में गाने गाए हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उर्दू एंड बंगाली। और उनके बहुत से गाने फेमस हुए हैं, लेकिन हाउ कुड वी फॉरगेट छैया छैया, जय हो, स्लम डॉग, मिलियनियर का गाना, रमता जोगी फ्रॉम ताल, बीड़ी जलाई ले ओमकारा का गाना, हौले हौले रब ने बना दी जोड़ी, एंड देन बिस्मिल हैदर का गाना, गल्ला गुड़ियाँ, दिल धड़कने दो। तो ये गाने मैं शामिल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये लाइका गोल्ड है जहाँ पर पुराने पुराने गीत रेट्रो स्टेशन है और आप पुराने गीत इंजॉय करते हैं। जय हो के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे वो और दो फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते और नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर भी जीता हुआ है। उनकी आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत तो उसकी ताकत, जुनून और वो बड़े इमोशनल होके गाते हैं, भावनात्मक अभिव्यक्ति के इंसान हैं और इसी वजह से सुखविंदर सिंह बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सम्मानित सिंगर्स में से एक हैं। और भी बातें होंगी और कोशिश रहेगी कुछ पुराने गीत मैं ढूंढ पाऊँ, लेकिन 80s में बहुत कम उन्होंने गाया और जितने गीत गाए उनमें से अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। पर हमारी तरफ से शुभकामनाएं सुखविंदर जी को।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आज आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है. एक पाउंड के बदले, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 128 रुपीस एंड 90 पैसा आपको मिल सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: भाई आज रात third place final होने वाला है France और England के बीच में. रात को 10 बजे ये match शुरू होगा तो देखना मत भूलिएगा. और इसी के साथ Rack Law वालों की offer का भी फायदा उठाइए. उनका ये कहना है कि 15 मिनट की free legal advice आपको मिल सकती है. ये Rack Law वाले हमारे sponsors हैं और आपको सिर्फ mention करना है Laika.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
4: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
7: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
8: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Leicester Miller is back.
12: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
11: Confirmed artists include Lember Husseinpuri, H. Tami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
12: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
11: Leicester Mela is back.
12: And the stage is about to explode. Confirmed artist
11: Lember Husseinpuri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
12: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
11: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
12: Arts Council England.
13: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but mobile, My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
3: Okay, help's on its way.
14: Grab my hand!
15: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
17: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भैया आप सोच रहे होंगे कि सुखविंदर सिंह के गीत सुना रहे थे तो पंकज जी की आवाज़ शामिल की, तो क्या आप जानते हैं कि ये वो गीत है जिसमें जो हाई नोट पर जो आलाप लेने थे वो सुखविंदर सिंह जी ने लिए थे। जी हाँ, हिज वॉइस वॉज नोटिस बाय द कंपोजर ड्यू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स एज ए सिंगर एंड सब्सिक्वेंटली वर्कड एज अ म्यूजिकल अरेंजर ऑन सेवरल ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम किया था ड्यूरिंग द लेट 1980s एंड अर्ली 1990s। वन ऑफ हिज अर्लीस्ट रिकॉर्डेड वोकल कॉन्ट्रीब्यूशंस वॉज इन द सॉन्ग चिट्ठी आई है from the film Naam in 1986 which was performed by Pankaj Udas। aap sabne suna to is geet se phir inko bhi pehchan mili kine Sukhvinder Singh ji ko। jis geet ki main baat kari thi ki mujhe bahut pasand hai wo geet main aap tak pahuncha rahi hu is umeed par ki aap zarur ise enjoy karenge।
1: ye hai Leica Radio
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles।
2: आ छू ले मुझे छू ले। दिस वॉज हिज प्राइवेट एल्बम कॉल्ड जश्न।

0: और इस गीत को लिखा भी था, कंपोज भी किया था और गाया भी था सुखविंदर सिंह जी ने. सुखविंदर सिंह इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. हमारी तरफ से, सारी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स. मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम. ग्रैब योर कोका बोल टुडे.
0: भाई इसी के साथ सरिता आप सभी को याद दिलाने जा रही है, लाइका रेडियो नेटवर्क की सेलिब्रेटिंग द एनुअल रथ यात्रा दिस संडे 19th जुलाई स्टार्टिंग फ्रॉम SKSST स्वामी नारायण मंदिर कैंटन हैरो टेम्पल से शुरू हो गए एंड एंडिंग एट श्री स्वामी नारायण टेम्पल इन स्टैनमोर. डिवोटीज विल हैव द चांस ऑफ पुलिंग लॉर्ड जगन्नाथ जीज चैरियट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैरो एंड ब्रेंट विद लाइव ऑन एयर अपडेट्स भी होंगी. रवि शर्मा जी वहाँ होंगे, सरिता सबरवाल विल बी देयर एंड अश्विनी और शायद हो सकता है कुछ और प्रेजेंटर से भी आपकी मुलाकात हो. लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड दोनों जगह आप अपडेट्स सुन पाएंगे. टू फाइंड आउट मोर यू कैन विजिट SKSST.org.
1: Listen wherever you are by downloading the Lyca Radio mobile app now. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Lyca Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Lyca Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to lycaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@lycaradio.com, or you can advertise on the Lyca Radio Network by emailing sales@lycamedia.co.uk.
2: ये है Lyca Radio. क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
3: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर
4: दस्तार. एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी.
3: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत घुराया ते योगराज सिंह.
5: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स.
4: क्रिएट टेरर.
3: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू.
4: एक सिंह दा पुत्ता दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार ले लड़ूंगा भी.
6: लेस्टर मेला इज बैक
7: एंड द स्टेज इज अबाउट टू एक्सप्लोड.

ये गीत मैंने लिया था फ्रॉम द फिल्म तीन देवियां. आई डोंट नो कि ये गाना उन पर कल्पना जी पर पिक्चराइज हुआ था या नहीं, लेकिन गाना बहुत खूबसूरत और मुझे उम्मीद है कि गीत को आपने पसंद भी किया. और प्रोग्राम का अगला गीत हमें पहुंचाने वाला है कहाँ, न्यूज तक. न्यूज के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ. आज बहुत से बर्थडेज हैं, बर्थ एनिवर्सरीज हैं, बताऊंगी नेक्स्ट आवर में.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और उम्मीद करती हूँ कि दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए। राजेश खन्ना सुपरस्टार रहे, जितना फेम उन्हें मिला, जितना प्यार उन्हें मिला शायद ही किसी और एक्टर को मिला होगा। उनके सभी की सभी फिल्मों को, स्पेशली 60s, लेट 60s और 70s की फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। और यहाँ तक क्रेज़ थी गर्ल्स में कि उन्होंने अपने अपने टैटूज बनवाए हुए थे, या कहते हैं कि ब्लेड से या सुई से या यू नो उसके राजेश खन्ना के नाम छिदवाए हुए थे, खुदवाए हुए थे। इतना प्यार करती थी गर्ल्स टू राजेश खन्ना। एंड राजेश खन्ना की सभी फिल्में उस वक्त बहुत पसंद की जाती थी। कितनी फिल्में आपने देखी अगर आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। राजेश खन्ना मेरे भी फेवरेट रहे हैं। एंड राजेश खन्ना जिनका असली नाम जतिन खन्ना था, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया था। और उन्हें उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो उनके पास नहीं रहते थे, बल्कि ही वॉज अडॉप्टेड बाय समिति। एंड राजेश खन्ना जी ने 1965 में फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के टैलेंट हंट कंपटीशन में हिस्सा लिया था और इसे जीत के इस जीत के बाद उन्होंने फिल्मों में पहला कदम रखा था, उन्हें पहला मौका मिला था। उनकी डेब्यू फिल्म थी आखिरी खत, आप सभी अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हैं, इन 1966। एंड इंडिया की तरफ से एकेडमी अवार्ड जो था, जैसे ऑस्कर अवार्ड होता है उसके बराबर के ये अवार्ड होता है, के लिए ऑफिशियल एंट्री बनी थी। एंड उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है। उन्होंने लगातार 15 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड बनाया जो आज भी बहुत ख़ास माना जाता है। राजेश खन्ना सिर्फ एक्टर ही नहीं थे बल्कि कुछ फिल्मों में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी की है। और उन्होंने सफ़र, अमर प्रेम और सौतन जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज़ दी थी। फिल्म आनंद के लिए उन्होंने रेगुलर एक्टिंग फी नहीं ली थी, डू यू नो दिस, जिसके बदले में उन्होंने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में हिस्सा मांगा था, जो एक अलग बिजनेस डिसीजन था। उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त थी कि कई बार फैंस उनकी कार को लिपस्टिक्स लगा लगा के रंग देते थे, डिफरेंट कलर कर देते थे, इतना प्यार करते थे। आज भी राजेश खन्ना और उनकी एक्टिंग को याद रखा जाता है और साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था। तो और भी बातें ज़रूर मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। गाने बता दूं कि आप मेरे बहुत से साथी मुझे लिखकर भेज रहे हैं कि ये गाने शामिल कर दें, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी पसंद को भी पूरा कर पाऊं। लेकिन मैं आपको भी चॉइस दे रही हूं। ये दोनों गीत तो आपने सुन लिए, उसके बाद आराधना का मैंने चुना है एक गीत और वही गीत मैं प्ले करने वाली हूँ, बताऊंगी नहीं कौन सा वाला। मेरे जीवन साथी का कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, दीवाना लेकर आया है या फिर कितने सपने कितने अरमां? इन दोनों गीतों में से क्या आपकी पसंद है मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। दीवाना लेकर आया है कितने और कितने सपने कितने अरमां, ए और बी, जो गाना आपको ज्यादा पसंद है उसके बारे में जल्दी से लिख दीजिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Be 1 British sterling pound ke badle aaj aapko de rahe hain ye 128 rupees and 90 paisas. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: और यही मैं ऐड कर दूं कि ये आपको 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस देंगे अगर आप लाइका का नाम मेंशन करेंगे। और अब बता दूं कि कौन सा मैच होने वाला है। आज 18 जुलाई सैटरडे रात 10 बजे होगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मैच, और कल फाइनल किसके बीच में, स्पेन एंड अर्जेंटीना में। किसे आप बैक करें, किसे सपोर्ट करें, बताना चाहते हैं जरूर बताइए।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, Panto fun for all the family.
6: Radio partner Leica Radio.
7: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: फिल्म आराधना से चुना गया गीत शक्ति सावंत ने बनाई थी ये फिल्म और बहुत ही प्यारा सा संगीत है स्टीवर मन साहब का और जोड़ी थी शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना की जो बहुत पसंद की गई और इन्होंने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम भी किया और उन्हीं की फिल्म सफ़र के भी दो गीत मैंने क्यों किए हैं लेकिन मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद आएगा जीवन से भरी तेरी आँखें या जिंदगी का सफ़र कौन सा गीत आपको ज्यादा पसंद है जल्दी से मुझे बता दीजिए पहले गीत को जो मिले हैं वोट्स उसमें ज्यादातर मेरे साथियों ने गाना पसंद किया है बी कितने सपने कितने अरमा वाला गीत एंड थैंक यू एवर सो मच आप सभी का कि बड़े प्यार से सुन रहे हैं राजन सहगल जी यू आर नॉट फीलिंग टू गुड मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए एंड कार्तिक बहुत सारा प्यार दीजिएगा राजन जी को एंड विजय गनोवा जी यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू आपकी जिंदगी में ऐसे दिन बार बार आए हजार बार आए हरीश रुड्डा जी मोहम्मद अयूब चौहान साहब निधिश आपने भी जो गीत सुनना चाहे वही प्रोग्राम में शामिल हो रहा है रितेश आपकी पसंद दूसरी है मानसी जी इंतशाब हरप्रीत जगतार जी परविंदर मठारू जी और भी बहुत सारे नाम है हना जी आप सभी ने ये गीत सुनना चाहे तो चलिए पहले गीत सुन लेते हैं या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मैं शेयर करना चाहूंगी आप जानते हैं कि अ पोस्टेज स्टैम्प फीचरिंग राजेश खन्ना वॉज रिलीज बाय द इंडिया पोस्ट ऑन 3rd of May 2013 ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ राजेश खन्ना वॉज अनवेल्ड एट बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम एट बांद्रा बैंडस्टैंड मुंबई में एंड अ चौक जिसे कहते हैं चौक में बैठते हैं चौक एक चौक बनाया गया इन गिरगांव हैज बीन नेम्ड सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक इन हिज मेमोरी इन 2014 एंड हिज बायोग्राफी राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार बाय यासिर उस्मान वॉज पब्लिश बाय पेंगुइन बुक्स एंड इन 2022 में हिज बायो फी राजेश खन्ना द मोस्ट वर्सटाइल सुपरस्टार एक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा बाय नारायणन सुब्रमण्यम वॉज रिलीज इन 2018 वन किलोमीटर फिटनेस ट्रेल इन लाजपत नगर नेशनल पार्क वॉज नेम्ड आफ्टर राजेश खन्ना विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय हिज वाइफ डिम्पल कपाटिया कितने अच्छे इंसान काम करते हैं तभी उन्हें दुनिया जाने के बाद भी इस तरह से याद रखती है
0: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो

0: biggest classics on Leica Radio.
1: और ज्यादा साथियों ने मेरे इस गीत को पसंद किया। जी हाँ, जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और जो बातें मैं बता रही हूँ वो भी आपको अच्छी लग रही है, जानकर अच्छा लगता है। राजेश खन्ना 17 ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एंड इसके साथ साथ एंड रिसीव 10 नॉमिनेशंस। ही वन 4 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और ये है प्रोग्राम का लास्ट आवर. आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी. तो फर्स्ट टू आवर्स कहाँ थे आप, जल्दी से बता दीजिए मुझे कि आप मेरा साथ दे रहे हैं 4 बजे से या अभी अभी सुनना शुरू किया है. राइट, जो मेरे साथी मुझे बराबर मैसेज लिख के भेज रहे हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इसी तरह से अपने मैसेजेस भेजते रहिएगा. प्रोग्राम के इस आवर के पहले दो गाने एक ही डायरेक्टर की फिल्मों के थे, राजीव गुलशन राय. आप इनके नाम से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे. बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1955, ही इज़ एन इंडियन डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड फिल्म एडिटर एंड हीज सन ऑफ प्रोड्यूसर गुलशन राय. आप सब जानते हैं उनके काम को भी. ही हैज़ डायरेक्टेड मैनी फिल्म्स अंडर हिज फादर्स प्रोडक्शन कंपनी एंड त्रिमूर्ति फिल्म्स, के बारे में कौन नहीं जानता है, इंक्लूडिंग ब्लॉकबस्टर्स लाइक त्रिदेव इन 89, विश्वात्मा इन 92, मोहरा इन 94 एंड गुप्त इन 1997. एंड ही वॉज मैरिड टू एक्ट्रेस सोनम फ्रॉम 1991 टिल 2016 एंड has a son with her as well. So, अब वो एक साथ नहीं है. राजीव राय started his career as an assistant for his father, Gulshan Rai, distribution and production. And he eventually made his debut as a director with the 1985 hit film Youth, जिसका गीत आपने अभी अभी सुना. दोस्तों, अब तुम सबको ये शाम मुबारक हो. तो सच में मैं अपने दिल से कहती हूँ कि आज आप को आज की शाम बहुत बहुत मुबारक हो. एंड उसके बाद उन्होंने विश्वात्मा त्रिदेव बनाई, जो कि सुपर डुपर हिट फिल्म थी. देन विश्वात्मा अनदर हिट फिल्म एंड मोहरा इन 1994, मोहरा के भी गाने बड़े ज़बरदस्त, एंड गुप्त इन 1997. और उनकी नोटेबल फिल्म्स जो जितनी भी फिल्में ये मैंने नाम लिए हैं, मोस्टली फिल्मों में संगीत ईदर विजू शाह का या कल्याण जी आनंद जी का रहा. उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए और हम राजीव राय जी को बहुत बहुत बधाई देंगे उनके जन्मदिन पर.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी आज आपका एक ब्रिटिश पाउंड आपको क्या दिला सकता है, 128 rupees and 90 paise. और आप ब्रांच में जाकर ऑनलाइन SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Like a Radio.
3: Like a Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: भई आज मैच है फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच और रात 10 बजे ये मैच होगा. और कल बहुत बड़ा मैच, संडे 19 जुलाई फाइनल होने वाला है फाइनली, एंड स्पेन और अर्जेंटीना के बीच ये मैच होने वाला है. और बहुत से मेरे साथी अपनी अपनी चॉइस भी लिखकर भेज रहे हैं कि हम इस टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. और आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं बताना चाहते तो जरूर बताइएगा. बट डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
4: Mr. Stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollots Hill, Leicester, LE54UN.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry, 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywood. Surinderella, panto fun for all the family.
6: Radio partner Leica Radio.
7: South Pole travel 7 days a week. South Pole travel 24 hours a day. We're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there.
10: Southall Travel, at all protected.
11: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
10: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
12: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
13: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
14: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
13: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
15: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
16: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
17: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: What a beautiful song from the film Ye Raaste Hain Pyar Ke 1963 में आई थी ये फिल्म और रवि जी का था संगीत जो है इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक एंड इस फिल्म में काम किया था सुनील दत्त थे लीला नायडू थी एंड अशोक कुमार एंड फिल्म का संगीत रवि जी का बहुत खूबसूरत गीत लिखे राजेंद्र किशन जी ने इस फिल्म में और भी दूसरे गाने थे तुम जिस पे नजर डालो वो भी गाना बहुत खूबसूरत है ये रास्ते हैं प्यार के द टाइटल ट्रैक इज आज ये मेरी जिंदगी वो वाला गीत भी बहुत खूबसूरत है चलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी पसंद आपकी पसंद बन पाए वैसे आपके मैसेजेस इस बात की गवाह देते हैं कि आपको हर एक गीत मेरा चुना हुआ पसंद आता है हरप्रीत वैंकूवर में सुन रही हैं सोइनी रावल जी वत्सला जी भारती डी जी विमल रायन जी निर्मल एंड किरित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी मानसी जी दिव्या फ्रॉम हैरो हरीश रूटा जी शेखर जी एंड जगतार जी इन वैंकूवर एंड परविंदर मठारू ललित पटेल रितेश जी संतोष जी उल्लास फ्रॉम टोरंटो हंसा वोरा हना निधिश इंतशा महेंद्र बरजारिया जी इन साउथ हैरो मोहम्मद अयूब चौहान एंड विजय गनोवा जी आज बर्थडे मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे एंड भाई जिनके नाम रह गए हैं आई एम सो सॉरी बहुत लंबी लिस्ट है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो उस गीत में आवाज़ है मेहदी हसन साहब की आज ही के दिन उनकी जन्म हुआ था इन 1927 तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर वैसे तो उनके बहुत से गीत बहुत सी गज़लें मुझे बहुत पसंद है लेकिन दिस वन आई रियली चेरिश बिकॉज क्यों बताऊंगी पहले सुन लीजिएगा
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भी आप सोचे होंगे कि सरिता ने क्यों कहा कि इसके साथ मेरी यादें जुड़ी हैं. यस, मेहदी हसन साहब एक प्राइवेट महफिल थी हमारी और उस महफिल में उन्होंने ये गीत मेरी रिक्वेस्ट पर गाया था और उन्होंने शबाना आजमी भी थी वहाँ पर. वो देखने लगी कि क्या सरिता कौन है, सरिता की पसंद क्यों शामिल हो रही है. सो मुझे इसलिए ये गीत गजल कह लें, खतील शफाई साहब का लिखा कलाम बहुत पसंद है.
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds.

0: मेरे जी हसन साहब की आवाज़ हमेशा अमर रहेगी, इनके गाए हुए गीत हमेशा हम गुनगुनाते रहेंगे, चाहे वो गीत हो या गजल हो। और ये एक एक्स्ट्रा मैंने गीत चुना आप सबके लिए और उम्मीद करती हूँ आपने इसे पसंद भी किया। लाइका रेडियो। और अब अपने सभी सुनने वालों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप इस सितंबर एक अनफॉरगेटेबल फैमिली एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं तो सुन लीजिए ध्यान से कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू बी द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी, द स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द आइकॉनिक रॉयल एल्बर्ट हॉल एंड इज नाउ कमिंग टू ओवल ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27th of September, क्रिएटेड बाय नितिन पालन MBE, फाउंडर ऑफ सनातन इवेंट्स एंड फीचरिंग स्टनिंग कोरियोग्राफी बाय द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम। दिस इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोडक्शन है वो रामायण की टाइमलेस स्टोरी को फोर पावरफुल चैप्टर्स एंड स्पेशली कंपोज्ड 7 सॉन्ग साउंड ट्रैक के साथ पेश की जाएगी एंड इज अ ट्रूली इंटरनेशनल कास्ट के साथ स्टेज पर लेकर आए हैं। एंड स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल प्री शो शाम 5 बजे से लेकर 5:45 तक चलेगा और उसके बाद मेन परफॉर्मेंस शाम को 6:15 पर शुरू होगी, 9:30 तक चलेगी। तो देर किस बात की है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस मैजिकल सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। बुक योर टिकट्स नाउ टुडे विद www.diwalistory.com।
1: This is Leica Radio across the Midlands by Southall Travel.
0: और साउथ होल ट्रेवल्स वाले भी आपको सफ़र करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि दुबई की बहुत सी ऑफर्स हैं। कॉल साउथ होल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: The Janan and J. Dodds summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dodds summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: Leicester Miller is back.
5: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
4: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
3: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी.
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
4: दिल तो टूट भी गया,
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
6: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
7: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.